एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रीतम गौती सिमर के गुरु नानक लाइन दियाई फिर अंग कुते अमरदास रामदास से होए सहाय। अर्जुन हर को बिन नाओ सिमरो श्री हराय श्री हरि कृष्ण दियाई है जिस डिठे सब दुख जाए। रुतेग बहादुर सिमरिया करनो निरावे डाय सब ठाए होए सहाय। जसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

समासी। सेतन सेतन जन हरत्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत सल पंडा, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर हर पूजा जी, तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी, कर क्रिया खट करम करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो घट घट के

पेट करे फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दहे अपारा, जब करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सबहू, जेते बदन सृष्ट सब।

सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुद है जेती वर्णन पिन पिन तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रतम सा

सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन खाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहव मरे पुरख जवन पर

सबकाला दुष्ट अरिष्ट तन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर मौसव होई दुष्ट छाछ